आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम फैलाएं और माशरे को जोड़ने

0: बैक टू बैक कॉल सिलसिला जारी था 0332-96-329 जी और तो से देना अलावा सिफात का स्मेडिक सुमरा प्रोडक्ट अगले बारे की मालूमात मजीद हौसल गोड़ा हेल्पलाइन नंबर हम मौजूद है सिफात का स्मेडिक पाकिस्तान 0313-97-5-05 अगले मेरे हर अभिता चिना आके वाले से और मालूमात खरीद सकते हैं और फेसबुक यूजर सीधे फेसबुक किम मीनावाल यूज करे नो आगार सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफिशियल फेसबुक पेज चला मौजूद है आज तक एक चले चले वीडियो गाने सीधा कहता है शेष सिफात से सोमरा प्रोडक्ट दीजिए फेसबुक सर्च बार था लोड से अब तो बोली के सिफात कॉस्मेटिक तो सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफिशियल पेज चला मैं कहता रोशी लाइक है फॉलो करें अक्षर अक्षर वीडियो गाने सीधा वो गुरे लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर चीमी से सूखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जन
1: खबर कौन देखा रखना
0: सो का
1: नईम खान खबर कौन देखा रखना
0: नईम खान सड़े वहां से पहले साल निकाल कर दे कुर्बान लगे से वाह गजलजार मीना वाली है माशाल्लाह दे दे सलाम से
1: खैर दे खैर दे तेरा मेरा
0: शुक्रिया जबल कोशे नईम प्रोग्राम सर और वे
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोग्राम फटेर मजदूर रहोंदा
0: चेतर रहोंदा टांग नया पला ना तेरा उषा सही और भी ख्वाज है की खैर टांग न मख के ना तेरा उषा टांग न मख के ना बुझूषा फशोला रतो सही जी फशोला रतो सही नईम थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम के शुरू जी स्कूल जॉब देर सी ओके जी ना होचे जकले वशे ब्याब 100% फैसला तक वे रस्तो जकले से जवाब देर का रोता वशे जी रोता वशे अच्छा है कवा दो तवे छे करखद है हां आफताब लला दा और वा आफताब लला प्रोग्राम बोर वे दा ये छे 100% शो है शो वर यहां छे दा कवा दो सा ना जी बिल्कुल तो दिमो करेक्शन चेखना माँ खवाए तो ढेरा ढेरा मेरा बनीशा शुक्रिया यो जहान मनन दे कहूँ तो ढेर शुक्रिया जी अल्हम्दुलिल्लाह तो सी जी हेमिश करेक्शन दे पर है माशाल्लाह चेदा जी ढेर खालक जी मौजूद दे पता है ना सही करेक्शन में कभी जी बाहर हलियो जहान मन कहूँ ठेम रुस रखा हमेशा खपा न शेरोना करेक्शन है वो ब्याह से प्रोग्राम के गौशा दादी करेक्शन प्रोग्राम ना था द मंडी दी मंडे ये तो यू जहान मानना उस दे पर खंडे रे खबर रियो तो खो खबर जस्ट दे रियो की माती खबर रियो दोस ले गाना चागा दी मिजा जिंदा कोई सतड़ले फाई देर कभी खुन्ना खबर है ना कौसा ब्याह जा सीवी गाना से खास शुरू दे या टाइम रन आउट के जे जे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी वालेकुम सलाम जी
2: सड़ा
0: माँ से अहमद दीन भाई सरंगे से सड़ा माँ से यूजल भैया जी बिल्कुल दीदी इनाम चिदागस्ताद है कहता इनाम ना बगैर चिदा चार न कहे वो दा अंदाजाम होता नन वाला के दला ना जी ना जी ना जी इनाम फिलहाल बदे के नश्ता इनाम दादा है कहना चीज ढेर ढेर दुआ गाने देता कहूँ बदे ना इनाम के जी
2: बस बस इनाम बड़बिंगा
0: बड़बिंगा वट इज बड़बिंगा वट इज बड़बिंगा हाँ ललापा के बड़बिंगा हफ्ताब लला रुसरा और वाह बड़बिंग अच्छा तो जनती बलबला होना ही जनती बलबला होना ही जना खाला के जनती
2: बलबला
0: अच्छा ठीक है तो जाओ मैं वो निकाल ठीक है रस तुझे जाओ देर कहाँ से अच्छा ठीक वाह अहमदीन यू जहान मन ना प्रोग्राम की चाहता दुआ सलाम ठेम डेर रुसा शाटता ओके जी अफ्ताब लला सलूमुना देर केस का अहमद दीन वाला है पांडे पांडे ओके जी थैंक यू सो वेरी मच वाई जे बड़बिंगा व्हाट इज बड़बिंगा मैनेजर से व्हाट इज बड़बिंगा بالکل زنه خلق بیت پڑوینگا بیا زنه خلق بیت جنتی بلبل بیا دی دی ہنڈی رسٹوری دا چیتا بیا دیتا بیان دا وان
3: کربلا لو گوری نادانی
0: لشکی صابر وگئے ہاو کالا لشکی صابر وگئے لشکی سندر بیا یوشا

दियो ना जे सीधा हजार दे तो से मैसेज मने गा छ टाइम रे काम दा खना छ चारो दा मैसेज कर दियो छ रे के भाटा के मलिक सिंह जे चोकना खैर रखना सलाम ना राज भाई वेलकम वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सलाम टू ऑल टीम जी, वालेकुम सलाम रखी भैया जहान मना। थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज का वाले वंस अगेन रकीब खटा के वही कहना जेल जो कर रखना वही तमाम नए और पुराने लिसनर को जी चाक वाले लिसनर को करक वाले लिसनर को आपने रेडियो मन करक में बहुत बहुत वेलकम स्टडी मां से। और राज भाई तो हो डे डे हर गले स्टडी मां जी रखी वो यो जहान मनना। थैंक यू नेक्स्ट भाई कहना चाहे अस्सलाम वालेकुम खड़े शहबाज ना अब्दुल हादी भाई इस तरह माँ से वही जे प्रोग्राम आओ हम हाजिरी में बोली क्या वाह वाह आवाज दे ओके ना पठान से यो जहान मनना अब्दुल हादी जागा दे रजिस्टर के मेरे पी वैसे वाला है।

हिदायतुल्ला वाई ची टांग मेन सिटी तंग बाजार बनूची होटल निज द हमजा जनरल स्टोर मेच में के तमाम प्रोडक्ट मौजूद है बड़े रजिया तमरन थैंक यू खुशहाल हो जी हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई दर्द हुआ जमा खोर तजान ला रागलम शॉप की यम कुछ सीधी बार हर लिख ली थी वाई चीज इश्म विख्तोर पर सही इस्तेमाल कर मनो इश्म आयल रवाखला और मालिश को बड़े आपको और सब सर को सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अली ने खबर कुम दुआगान सलाम वालेकुम सलाम आयशा रशीदुन और आयशा ने बल आयशा माशाल्लाह आयशा भी जो पुशीदु की बल आयशा सलाम इनाम भाई सिंह जस्ता सुखूर आयशा यमा द काका साहेब भाई राम डेटे जाता मुबारक शाह लब इश्मा कबनी भाई तासो आई तमी सलाम दे वालेकुम सलाम दे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जैनब भाई सलामुन में कबिल का भाई जाना जैनब द मर्दान वाई छ मंग दा से नयु खा मंग शापर नु खुदा पाक तासु में नहीं याद करी कना मंग जान याद करे दे गोर जो मंग होस द प्रदो पर शादी हाल के जमंग सकार दे सही दा चोर द ने की को मंग जान याद करे मर द जान याद करे मर द खपल मतलब जनाना खपल फैमिली और खपल चकम मतलब जमंग प्रोग्रामो ने दक में याद करी दी खा तासु में नहीं याद करी गोरे खा लाला सिंह शो तराशे पमा सम ईद वी माई फेवरेट बाई तासो तमी सरलेश पुरोम बादर बाबा।

जी वेलकम हमायून काल तलाई दैची बांडा द उत्साह बांडा द उत्साह वाला द टेरी तारोशी का नाम पटेरी से युद्ध कुम दयो अगावर तो शाय हो आगे ना चिकी मधु शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट उपस्थाई की

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क 1

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा अनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा अनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा अनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
3: हर कदम दिखाओ
4: हमने आँखों से देखा नहीं है मगर
5: सके बचेर द गर्जे रा गर्जे
6: करी साहब खोर और लजलयो दमख कुला द पारा क्रीम रा नगोश्ती दी दुकान हमरा नहिर दे और क्रीमो नुमा हमरा नहिर दे।
5: वाह सके बस सदा सड़िया उरुसा शॉपिंग सेंटर अंबेरी के लिए तरोशा चिदरला इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम दर कम नपक द सीरम मिक्स का वाल जरूरत इश्ता और न विटामिन कैप्सूल और गारंटी सरबा फुराकाई मख दर तफकवी इंशाल्लाह।
6: वाह इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद।
7: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورت دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ہوزم
8: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد سپا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا سفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
8: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय हो कस्ती थी
1: जनाती से तारखना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो कस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुरता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब रो दर्दा इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर्दा उ दवा मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने वलशे अंदरून लकी गेट जान से बेगाले पर शे मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर तमिला विजी।

केक कटेगा, सब में बटेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन मिश पलोस के नहीं है, देर तक जिकिम ने कहना पलोस न रोसी, फिर वर्त जावरेगी है, केक कटेगा, फिर वर्त जावरेगी है।

0: जोन का बर्थडे पत्तशाखलो मनाओ है, जोन का बर्थडे पत्तशाखलो मनाओ है, नबी की केक चढ़ाई नहीं है, नौरा की बात डेरा जुत जुताई है मिश्रा है, उसके कहना सर डेर जुता ना मानना शुक्रिया अवर दिंग के बाद आसो गाप शॉप जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बस और की फटा का डेर जुता मानने के शुक्रिया रे की और स्पेशल स्पेशल लेकिन जोहान बोलते हैं मिश्रा नाम मुबारकबाद नकल और से बन पे इंतजार दी चार सर सर मिशकालो खला कहना अस्सलाम वालेकुम सड़ी मार्श
1: লাতিফে
0: প্রোগ্রাম নাই কেন হ্যাঁ লাতিফে প্রোগ্রাম নাই নখা মাখা আচ্ছা স্যার আমি চালা বক্তের জিন্দগি সাধু আল্লাহ তিফা হোক কেন
1: চিলমুজ
0: বেলে নাকি
1: আচ্ছা
0: ওই এমড়া আসলা আচ্ছা হ্যাঁ ডের জুতা মানে কাল কাউলিও জানা বিলকুল ডের জুতা মানে কাল কাউলে ইহো জাহানা শুক্রিয়া ওদের সর সরা কাল নরকুলে আসসালাম আলাইকুম বল চাতা নেই মানাও খড়ি বাকায় জোহান নোম পান ক্লিপি না আছে কিমনি কেন জোড় খড়ি কুলি খবর কেন
1: বাপে
0: বই শুলে
1: صابر وزیر ورته
0: صابر وزیر وو چې کنه کال نه لګي کال نه لګي یاره دا پته نشته خو صابر وزیر چې کوم نه کنه لالا اسپیشلی والا تیفا پر وکړه کنه دا څه کله لا خبره ورو اته ته مشته مله بل سره تیفا نه غوړي کنه چې دا څه خواږه ولا یواله تیفا ها
1: تو سابه جنن د لاتیفه جامادو তারপরে খাবার আছে
0: তাকে
1: বলবি
0: তুই কেলে বলবি
1: কালাই পৌঁছে বাস্তা কালি চাষ রাউন্ড কালি চাষ চার তালা পুষ চার তালা ওই যে সর্বত হালিম।

0: तो दाय पर चार बने चुना सदा हाँ सा
1: जो सो अगी कारा कुली के पाये हाँ पसारा वाला
0: अच्छा अब गाँव में चल दस घर तो बने हाँ
1: ये जो से गलत एक संचाता लाख बोलो अरे बाद में चल हुआ ना यार मैं जब बगून लुस करूँ हाँ ये तो अजम दस लाख है तो जो मुझे कहूँ सात लाख

अच्छा वर्थिंग एक सौ दस रुपया ना समय सीखना शामिल करो और प्रोग्राम से फास्ट मैसेज चार मिनट तक लगे ना और सलाम लला साइलेंट क्वीन और सरा जुहान तड़ेर डेर हैप्पी बर्थडे मुबारक शाह डेर जूत मना डेर जूत वक्ती में से निकला यो जहान मना लिखी शुक्रिया लिखी बेहद मना और सलाम ना मेरी सड़ा माशा एम नादे महार फ्रम वजीरिस्तान सलाम ना फातिमा वजीरिस्तान ता सुंबल वजीरिस्तान ता आंशा खान ता यमना खान ता शहजादी मिसोद हानी ऑफ अल हम वजीर खजल वजीर अजर लाल गुली उजाला गुली नूरन एनी और सरा सायरा पठान मारिया अरमान ऋषि खान सोनिया खान और रोहिन खटक जीमल अनिल आलिया मुस्कान सुमैला उमामा सुमामा शहजादी और छोटा मरवा था स्पेशल सलाम वालेकुम सलाम यो जहान मरना शुक्रिया प्रोग्राम के मैसेज खोले इट्स मी सन ऑफ फ्रॉम कर्क हेलो हाय नाइस ब्रदर हाउ आर यू आई लाइक योर शो स्पेशल सलाम टू लॉर्ड जीमल ऋषि खान फातिमा वजीरिस्तान नादिया महार गुलाले शहजादी

छान आई एम नादी बाहर डेडिकेट विठो था अच्छा डेडिकेट विठो उठो था वे उम्मेदर था टोला पास बाकड़ा वे उम्मेदर था टोला पास बाकड़ा उदाई दे मयन का छे बेन दर देखो बिना बस जबरदस्त यो जहान मना शुक्रिया देखी वे यो खास